0: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ಈಗ ಕೇಳಿ ಯಶವಂತ್ ಹಳಿಬಂಡಿಯವರ ಗಾಯನ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಜೋಶಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಗೀತೆ.

0: ಇವತ್ತಿನ ಗೇಮ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು.
1: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
1: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है. वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं. हमें इन अनुभवों से भी सीखना है. अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है. वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है. एक गाँव का अच्छा प्रयोग दूसरे गाँव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
1: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign minister's meeting.

0: ಸಖಿ ಸಹೇಲಿ
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती, तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
2: बिल्कुल। और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है, और बताओ कैसे।
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता।
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
1: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं। तो
2: बिल्कुल अच्छा, लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं, ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो एक अंतरिक्ष है एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं। और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है। अभी भी हम चौंक जाते हैं,
1: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है।
2: बिल्कुल,
1: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है। कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
2: कहते हैं ना जो इंसान ने वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो।
1: बिल्कुल, है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है।
2: हाँ।
1: कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि दो महीने पहले, एक हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह
2: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी

0: पार्टी से लौट गए।
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
2: और जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहाँ की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल
1: ठंडी हवा
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिख कर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अतः नीला विशाल रूप, क्षितिज जहाँ आकर झुकता है, खिलती जहाँ सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य

0: ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना उसे जानना शुरू किया तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आरती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जैसा तुमने पहले भी कहा था आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, और बहुत ज़्यादा जो गहराई होती है वहाँ पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ज़रा सोच कर देखो ना आरती कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए, जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है। समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहां पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हो। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहाँ की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताज़ा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं। इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल, पहली बात तो। सबसे बड़ी चीज़ें जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना,

0: वो जीवन चक्र प्रभावित होगा बुरी तरीके से।
1: सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
0: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
1: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो आरती देखो हमारे साथी क्या लिखते हैं बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय जीवंत और अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है, तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही जो लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहाँ पर पानी के सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक मैं साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है, जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाज़ों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बहुत सारे अपन नरब दसा पड़ विचार
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी, जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज़ होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौने की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुँचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। आरती,
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं, और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले, और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: इतने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए

0: शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत ज़रूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दें, तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फ़ायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
3: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई हैं, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तो हमारे साथी देखो एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर

0: बात हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाए। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझ में एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये
0: है?
1: चाय पीने के लिए गाने गाके
0: मना लेते हैं।
1: बिल्कुल मना लेते हैं।
0: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के ज़माने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
0: सब बजते हैं। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए हमें। गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते। रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है, और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज़्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा, और ज़्यादा ज़ोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसा रूठना तो चलता रहता है ज़िंदगी में। देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फ़ोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
0: है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए हैं।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ ये कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर

0: लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत या जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहाँ अपनापन है वहाँ छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी हैं जो लिखी भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखे, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखे और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए, ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीज़ें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीज़ें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो हैं वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियाँ जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बहन को डांटने लगती हैं। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई

0: बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर तो, पास हाँ, सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठ।
2: सखी सहेली।

0: ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 9 ಗಂಟೆ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ
1: ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಐ ಆಮ್ ಅನುಜಾ ಕುಮಾರ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है. बेस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं. हमें इन अनुभवों से भी सीखना है. अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है. वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है. एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए. एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
1: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा